ते कुल जाऊना गौतम गरियाउना शिवजी लाई फुलमाला दाम पैसा भेटी दर्शन कोटि कोटि शिवजी लाई फुलमाला मन परे कि कान्छु हातमा समय लानुछु छोड़ बिना मुर्ती नौबाऊ को खुटो स्वर टाउ छोड़ दिना मजंगा।

0: அப்பே வைனையே பாட சொல்லி வாஸ்கு டிவி போக்குற இடையோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்தோ
1: கொச்சை பரிலைலை வாஸ்கு டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிக்ரியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொடி பனவுனி புக்கா உலாட்ட ஓயினே
0: तेती कुरा मा पने चिंता गर्नु पर्छ त सदरमुकाम चरीकोट बाट चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स मा लैजाऊ न त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छ नि सके गर्ने
1: त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्च देखि माथिको एलईडी किन्दा दिन्छौं सिपेमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
3: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814
4: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज

दाम पैसा भेटी दर्शन कोटि कोटि शिवजीलाई सुनमाला मन परे कि कान्छु हातमा समय लानु छु छोड़ दिना मजंगला कुर्ती न लौबाऊ को फोटो स्वर टाल।

0: विचार
1: विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।